पंडित भीमसेन जोशी को सुनने के बाद श्रोताओं कार्यक्रम में आइए सुने पंडित नरेंद्र शर्मा की लिखी रचना लता मंगेशकर के स्वर में।

0: प्रभाती वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 5:55 हुए हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें लौकी की खेती के संदर्भ में। लौकी का सब्जियों में एक अहम स्थान है और इसकी खेती पूरे देश भर में की जाती है। जहाँ तक हमारे इन द्वीपों का सवाल है, लौकी की खेती यहाँ पर आसानी से हो सकती है। लौकी के अनेक उपयोग हैं। सब्जी के अलावा लौकी से अचार, रायता एवं मिठाई आदि अनेक व्यंजन बनाए जा सकते हैं। लौकी स्वास्थ्यवर्धक है तथा शरीर को शीतलता प्रदान करती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। जहाँ तक लौकी के लिए ज़मीन का सवाल है, तो लौकी को लगभग सभी प्रकार की ज़मीन में उगा सकते हैं। शर्त यह है कि ज़मीन में जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। जिस ज़मीन में पानी टिकता हो, यानी पानी भर जाता हो, ऐसी ज़मीन में लौकी की खेती नहीं हो सकती। किसान भाइयों, अन्य फसलों की ही तरह लौकी में भी अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अच्छी किस्मों का इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक लौकी की उन्नत किस्मों का सवाल है, हमारे इन द्वीपों की परिस्थितियों में पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा संदेश, अर्का बहार आदि प्रमुख किस्में हैं जिनको की उगाकर आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किस्मों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग अथवा केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। किसी भी फसल को उगाने के लिए एक मौसम की ज़रूरत होती है, यानी जलवायु की दशा ऐसी होनी चाहिए कि फसल अच्छी तरह से उग सके और अच्छा उत्पादन दे सके। जहाँ तक लौकी का सवाल है, लौकी को हमारे इन द्वीपों की परिस्थितियों में साल भर उगाया जा सकता है। लौकी के बीजों को सीधे खेतों में बोते हैं। बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि पौधों की वृद्धि समुचित ढंग से हो सके। बुआई के समय लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर उचित होता है तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखा जा सकता है। बीजों को बोते समय एक जगह पर 3 से 4 बीजों की बुआई करें। इस प्रकार से किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। लौकी लगाए जाने वाले खेत में 50 टन गोबर की खाद, 110 किलोग्राम यूरिया, 360 किलोग्राम सुपर फास्फेट को ज़मीन में अच्छी प्रकार से मिला दें। कितने उर्वरक आपको ज़मीन में मिलाने चाहिए, इसकी ठीक ठीक जानकारी के लिए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच ज़रूर करवा लें। यूरिया की आधी मात्रा एवं फास्फोरस की बताई गई पूरी मात्रा को बुआई के समय ज़मीन में दे दें। यूरिया का जो भाग शेष बच जाता है, उसे 2 बार में पौधों में देना चाहिए। पहली किस्त जब पौधे 25 दिन के हो जाए उस वक्त, और दूसरी किस्त जब पौधे 50 दिन के हो जाए उस वक्त देना चाहिए। यदि मौसम सूखा है तो 10 दिन के अंतर पर सिंचाई ज़रूर करें। किसान भाइयों, जब पौधे में 4 से 5 पत्तियां आ जाए, तो 2 से 3 पौधों को एक जगह पर छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दें। समय समय पर फसल में निराई गुड़ाई करते रहें। 60 से 70 दिन में पौधों में फूल आने शुरू हो जाते हैं। किसान भाइयों, बताई गई बातों को ध्यान में रखकर अगर आप वैज्ञानिक ढंग से लौकी की खेती करेंगे, तब आपको 250 से 300 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर पैदावार मिल सकती है।
0: एग्री टिप्स कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, अभी आप लौकी की खेती इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। श्रोताओ, अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान की प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के

0: County Ground in Bristol tonight. The match will begin at 10 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। श्रोताओ, लीजिए सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी हडबे मायाबंदर होते हुए डिग्रीपुर की यात्रा पर कल 10 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान अगले दिन शनिवार 11 तारीख को सुबह 7 बजे डिग्लीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर जलयान एमवी कालीघाट कल 10 तारीख को रात 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान अगली सुबह 11 तारीख को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान का निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल, नानकावरी, माकाचुआ और आफ्रा बे होते हुए कैमल बे की यात्रा पर आज सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान रविवार 12 तारीख को रात 9 बजे कैमल बे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। जहाज नालंदा नानकावरी होते हुए कैमल बे की यात्रा पर मंगलवार 14 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी बृहस्पतिवार 16 तारीख को सुबह 8 बजे कैमल बे से चलकर नानकावरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्टेट आयरन शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से चलकर स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप के लिए आज दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर जलयान एमवी बाराटांग आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर जलयान एमवी जॉली बॉय कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से चलकर स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटान स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। जलयान दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा तथा जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा।

0: जलियानो के यात्रा कार्यक्रम समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हुए हैं। श्रोताओ लीजिए सुनिए कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष।

नमस्कार श्रोताओ, इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओ, क्यों ना आज की सुबह की शुरुआत किसी अपने की तारीफ करके की जाए। जब हम किसी को उसकी अच्छाई बताते हैं, उनके अच्छे स्वभाव और प्रतिभा की सराहना करते हैं, तो ये तारीफ के चंद अल्फाज उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती है और मन में आत्मविश्वास। श्रोताओ, तारीफ सुनना किसे पसंद नहीं? क्या किसी ने आपको कहा है कि तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया?

श्रोताओ, तारीफ की हद तब हो जाती है जब हम अपने दिलबर की तुलना कायनात की सभी नायाब चीजों से करते हैं। कभी उन्हें हम चांद कहते हैं तो कभी उनके जुल्फों को घटाए, लहराते आंचल को बादल और बाहों को चांदनी। इतने सारे तारीफ भरे शब्दों के बाद भी उनका ये कहना कि तारीफ ये भी तो कुछ भी नहीं।

कोई तारीफ भरे शब्दों से किसी को अपना बना लेता है और कोई ऊपर वाले से किसी चेहरे की मासूमियत, आंखों की गहराई और प्यारी सी मुस्कान को देखकर कहता है कि हैरान है हम भी देखकर तेरी कारीगरी।

0: तारीफ करने के अंदाज सबके अपने अपने, तो चलिए आप भी तारीफ भरे अल्फाजों से किसी के दिन को खूबसूरत और खुशनुमा बनाइए और दीजिए हेमलता को इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप इंद्रधनुष कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान।

जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या को मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिन्हें जानकी तथा महादेव ने अपने हृदय में धारण कर रखा है, आज मुझे उन्हीं चरणों के दर्शन प्राप्त होंगे। इन्हीं विचारों में खोए हुए विभीषण समुद्र के इस पार आते हैं, जिधर श्री राम की वानर सेना के शिविर लगे हुए हैं। वानर समूह ने उन्हें देखा तो शंका हुई, शत्रु का कोई खास दूत उनके बीच आ पहुंचा है। विभीषण को श्री राम के सम्मुख उपस्थित किया जाता है।

श्रीकांत पारगांवकर और सुरेश वाटकर के स्वरों में श्रोताओं अभी आप रामचरित मानस गान की 294वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम वतन के गीत।

की रूपरेखा। सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे देशभक्ति फिल्मी गीतों का कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुनिए सुबह 7:30 पर, जिसके तहत धरती की हरितिमा कायम रहे विषय पर श्रीमती गीता सागर से आप वार्ता सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर फनकार होंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। सुबह 9:00 सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। 9:30 पर शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में कर्नाटक शैली में TN शेष गोपालन का गायन प्रसारित किया जाएगा। SMS माई चॉइस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी सुबह 10:00। दिन के 11:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT भूले बिसरे गीत, फिल्मी गीतों से सजा ये कार्यक्रम सुनिए दिन के 11:30 पर। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसमें कुछ सुपरहिट गीत सुनवाई जाएंगी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप रेणु और विजय सिंह को सुन पाएंगे, और कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत दोपहर बाद 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक, तथा दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो की प्रस्तुति होगी। शाम 4:00 हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा कुछ पुराने गीत सुनवाई जाएंगी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुनिए शाम 4:30 पर। शाम 4:40 पर कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा। कार्यक्रम बहारों की शाम सुनिए शाम 4:45 पर। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, जिसके तहत किसानों के लिए कार्यक्रम होगा। बांग्ला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिरंतुनी। शाम 6:00 किसान वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी, जिसमें वन महोत्सव विषय पर ऋषिभा मिश्रा से आप वार्ता सुनेंगे। महफिले कव्वाली कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जनसूचनाएं। फिल्मी गीत सुनिए शाम 7:20 पर। शाम 7:30 पर युवा श्रोताओं को समर्पित कार्यक्रम युवा वाणी के तहत आप सुनेंगे कार्यक्रम पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत रोजगार समाचार का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर, तथा कार्यक्रम संदेशे आते हैं सुनिए रात्रि 10:00। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और इनसाइट्स कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, तथा रात्रि 9:30 पर विविध भारती मुंबई से रिले प्रायोजित कार्यक्रम विविध भारती प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत की प्रस्तुति होगी। श्रोताओ, अभी आप आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

वतन के गीत कार्यक्रम के तहत श्रोताओं अभी आप चंद देशभक्ति रचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब आप सुनेंगे मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्व अनुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। श्रोताओं अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों

0: यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पञ्जीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनाङ्के एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पञ्जीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए सुनिए जनसूचनाएं।

0: स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई। आज सुबह 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 84% तथा न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:01 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा 5:48। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान उड़ान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा उड़ान संख्या 2936 आज दिन के 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त विमान संबंधी जानकारी सुन रहे थे। एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP देश का एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को दिया जाता है। नामांकन एवं अनुशंसा केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर भेजी जा सकती है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम के तहत आप पर्यावरण कार्यक्रम में धरती की हरितिमा कायम रहे विषय पर श्रीमती गीता सागर से वार्ता सुनेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 8:30 पर आप जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को सुन पाएंगे। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 अर्थात 684 kHz और FM 100.9 MHz पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। तटीय जलीय कृषि नियम के तहत चिड़िया टापू में 2 और व्यवसायिक ओपन सी केज कल्चर इकाई के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वर्तमान आपातकालीन एम्बुलेंस टोल फ्री टेलीफोन नंबर 102 को बदलकर अब 112 कर दिया गया है।

आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर लगाए जा रहे हैं और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से पुराने वाहन फेरी समय सारणी को 13 जुलाई से पुनः बहाल कर दिया जाएगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तटीय जलीय कृषि नियम 2024 के प्रावधानों के तहत भारत में पहली बार एक व्यवसायिक ओपन सी केज कल्चर फॉर्म का पंजीकरण किया जा रहा है। मत्स्य पालन विभाग द्वारा लीज पर लिए गए समुद्री क्षेत्र में आइलैंड्स एक्वाकल्चर एंड मरीन सर्विसेज द्वारा स्थापित इस ओपन सी केज कल्चर फार्म को तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण चेन्नई द्वारा पंजीकरण प्रदान किया गया है। ये उपलब्धि सतत समुद्री जलीय कृषि विकास में द्वीप समूह की अग्रणी स्थिति को मजबूत करती है और निवेश, रोजगार सृजन तथा ब्लू इकोनॉमी के नए रास्ते खोलती है। तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण चेन्नई के तहत चिड़िया टापू में दो और व्यवसायिक ओपन सी केज कल्चर इकाई के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए उद्यमियों और मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 5 लाख रुपए प्रति केज की इकाई लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जो सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत इकाई लागत का 40% और महिला लाभार्थियों के लिए 60% है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वर्तमान आपातकालीन एम्बुलेंस टोल फ्री टेलीफोन नंबर 102 को बदलकर अब 112 कर दिया गया है। अब से द्वीप समूह के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आपातकालीन एम्बुलेंस टोल फ्री टेलीफोन नंबर 112 का उपयोग किया जाएगा, जिसमें जीबी पंत अस्पताल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं। मत्स्य पालन विभाग की ओर से वर्ष 2026-27 के लिए नए मोटर चालित मछली पकड़ने वाले नावों के निर्माण और खरीद के लिए सब्सिडी नामक केंद्र शासित प्रदेश योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत सामान्य मछुआरों, बेरोजगार युवा, स्थानीय उद्यमियों और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए इकाई लागत का 50%, जबकि अनुसूचित जनजाति और जनजातीय सहकारी समितियों के लिए इकाई लागत का 75% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक का द्वीप समूह का मछुआरा होना अनिवार्य है। इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र और विस्तृत दिशा निर्देश मत्स्य निदेशालय, क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों या अपने निकटतम मत्स्य उपकेंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 15 जुलाई तक निकटतम क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालय या उपकेंद्रों पर जमा किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 परीक्षा के लिए अग्रिम शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट से अपनी पर्ची डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष राजेश पुरिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने महासचिव मदनलाल और पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद एच जाडविट के साथ कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्वीप समूह के लिए कार्गो क्षमता सहित घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाने, सी प्लेन और उड़ान योजना के तहत विमान संचालन में तेजी लाने तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कनेक्टिविटी को फिर से बहाल करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है आधार शिविर और जलयान। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज़ हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से आम जनता की सुविधा के लिए

जुलाई माह में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा। नील केंद्र में आज और कल विवेकानंदपुर में 17, बसंतीपुर में 16 और 17 जुलाई तथा कचाल में 15 से 22 जुलाई तक शिविर लगेगा। विभाग ने लोगों से इस सेवा का लाभ उठाने को कहा है। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से 1 जुलाई से चाथम डंडस पॉइंट के बीच संचालित वाहन फेरी सेवा की समय सारणी में संशोधन किया गया था। यात्रियों को हो रही असुविधा और आम जनता के अनुरोध पर निदेशालय ने संशोधित वाहन फेरी समय सारणी को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार पहले से लागू वाहन फेरी समय सारणी को 13 जुलाई से पुनः बहाल कर दिया जाएगा। राष्ट्रव्यापी नशीली दवाओं के निपटान अभियान के तहत अंडमान निकोबार पुलिस ने कल 63 NDPS मामलों से संबंधित जब्त की गई नशीली दवाओं का मिनी बे स्थित INHS धनवंतरी में निपटान किया। ये कार्यवाही स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और स्वापक औषधि और जब्ती भंडारण नमूनाकरण और निपटान नियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार की गई। जब्त की गई दवाओं के मूल्यांकन के लिए निर्धारित दरों के अनुसार अवैध बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 43.58 करोड़ रुपए है। ये निपटान अभियान पुलिस महानिदेशक रविन्द्र यादव और पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर संस्थान के कौशल विकास कार्यक्रम प्रकोष्ठ की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वेल्डर में 3 महीने के अल्पकालिक निःशुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को उद्योग के अनुकूल तकनीकी कौशल की जानकारी देना और योग्यता आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रशासन के तहत उपयुक्त विभागों में 3 महीने की प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी आयोजित की जाएगी। वर्तमान बैच के लिए कुल 20 सीटें उपलब्ध हैं। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से कल तक संस्थान के SDP सेल से संपर्क करने को कहा गया है। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण पर जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी ने कार्यस्थल को सुरक्षित सम्मानजनक और समावेशी बनाने में पौष अधिनियम के महत्व पर प्रकाश डाला। तकनीकी सत्र का संचालन करते हुए पौष की मास्टर ट्रेनर रुबीना सिद्दीकी ने कानूनी ढांचे नियोक्ताओं और कर्मचारियों की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों आंतरिक समितियों के कामकाज और शिकायतों की रोकथाम निषेध व निवारण की प्रक्रियाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम में कला एवं संस्कृति विभाग जनजातीय कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तटीय जलीय कृषि नियम के तहत चिड़िया टापू में 2 और व्यवसायिक ओपन सी केज कल्चर इकाई के पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वर्तमान आपातकालीन एम्बुलेंस टोल फ्री टेलीफोन नंबर 102 को बदलकर अब 112 कर दिया गया है। नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से विभिन्न ग्राम पंचायतों में विशेष आधार शिविर लगाए जा रहे हैं और जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से पुराने वाहन फेरी समय सारणी को 13 जुलाई से पुनः बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। श्रोताओ, लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

यह है कार्यक्रम देश रागिनी, जहां हर देशभक्त कहता है देशभक्ति कोई एक दिन का जश्न नहीं, यह हर दिन निभाए जाने वाली जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी निभाता है देश का प्रत्येक नागरिक अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, शौर्यता और बलिदान की भावना के साथ।

हमारे देश की मिट्टी में समाई है शहीदों की शौर्य गाथा। यहाँ प्रेम में जहर पीने की भावना है। वतन के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूत हैं और ऐसे माता पिता हैं जो इन फौलादी वीरों को देश के हित के लिए बलिदान कर देते हैं।

हमें गर्व है भारतीय होने का, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी एकता और हमारे तिरंगे की शान है। भारत केवल हमारा देश नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारा सम्मान और हमारा अभिमान है।

खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी सब।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और कार्यक्रम में अभिनंदन। हर सुबह एक नई उम्मीद और नए सपनों की सौगात लेकर आती है। सुबह की पहली किरण कहती है, मुस्कुराइए, आज का दिन आपका है। क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इन्हीं सुविचारों के साथ कर रहे हैं आज के कार्यक्रम का आगाज। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए पर्यावरण कार्यक्रम, जिसके तहत धरती की हरितिमा कायम रहे विषय पर आइए सुने श्रीमती गीता सागर से ये वार्ता।
1: वृक्ष धरती का गहना है और हरियाली उसका श्रृंगार। पेड़ पौधों की वजह से हमारे वातावरण में चारों ओर हरियाली होती है। हमारा जीवन पूर्ण रूप से पौधों पर निर्भर करता है। इनसे फैली हरियाली हमारे तन मन को शांति प्रदान करती है। वन पर्यावरण और मानव का अटूट संबंध है। प्रकृति की हरियाली और शीतल वायु सभी का मन मोह लेती है। प्रकृति की गोद में पर्यावरण के संग रहना ऐसा सुखद लगता है जिसका वर्णन शब्दों में करना बहुत कठिन है। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार हैं। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। यह हमारे देश की वन संपदा ही थी जिससे भारत के लोग हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते थे। वृक्ष जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, इसके बिना जीवन की परिकल्पना संभव नहीं है। वन ऋतुचक्र एवं प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी के कटाव को रोकते हैं तथा उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पृथ्वी के जल को अवशोषित करते हैं, जो पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल में बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरंतर बना रहता है। वास्तव में हम एक वृक्ष का मूल्य केवल उसकी लकड़ी या ज्यादा से ज्यादा उसके फल से आंकते हैं, जबकि उसका इससे भी कहीं अधिक परोक्ष महत्व है जो दिखाई नहीं देता है। वृक्ष वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। अगर वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी तो जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार वृक्ष को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऑक्सीजन देने के अलावा पेड़ पर्यावरण से विभिन्न हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं। वृक्षों के अभाव में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना असंभव है, परंतु मनुष्य की भी स्वार्थ लोलुपता एवं असंतोष की प्रकृति से दिन प्रतिदिन वृक्षों की संख्या के असंतुलन की संभावना उत्पन्न हो गई है। अतः यह हम सब के लिए आवश्यक है कि हम वन के महत्व को समझें। खुले मैदान में खड़ा एक अकेला पेड़ भी कई जीवों को पनाह देता है, उन्हें जीने के संसाधन मुहैया कराता है। इसलिए एक पेड़ गंवाने का मतलब भी कई जीवों से धरती को महरूम करना होता है। बढ़ती आबादी और प्रतिवर्ष बढ़ते शहरीकरण के कारण हरियाली तेजी से कम हो रही है। सड़क निर्माण और खनन आदि के कारण कई लाख हेक्टेयर भूमि हाथ से निकल रही है। इसके फलस्वरूप आज हमें सूखे और बाढ़ आदि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी पर हरियाली के नुकसान में योगदान देने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण है। प्रदूषण न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक गतिविधियां, परिवहन और जीवाश्म ईंधनों के जलने से हानिकारक गैसों के निकलने से होने वाला वायु प्रदूषण पौधों को नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक अपशिष्ट और रसायनों के कारण होने वाला मृदा प्रदूषण

पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने की मिट्टी की क्षमता को सीमित करता है। जलवायु परिवर्तन एक और प्रमुख मुद्दा है जो पृथ्वी पर हरियाली को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि से पौधे मर जाते हैं, इससे उन जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं जो भोजन और आश्रय के लिए पौधे पर निर्भर हैं। अत्यधिक चराई, खनन गतिविधियां, उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय गतिविधियां भी पृथ्वी पर हरियाली के नुकसान में योगदान दे रही हैं। धरती में हरितिमा आवश्यक है। हम सभी को वृक्ष, जल और हरियाली के महत्व को गंभीरता से समझना होगा। यह बात आश्चर्यजनक भले ही लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे ग्रह को जीवित रहने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता है। यह आज जिस स्थिति में पहुंच गई है, उसे वहां पहुंचने के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। आज सबसे बड़ी समस्या मानव का बढ़ता उपभोग है, लेकिन पृथ्वी केवल उपभोग की वस्तु नहीं है। हम इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हम सभी हालात बदलना चाहते हैं, पेड़ पौधों के संरक्षण में योगदान भी देना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि किया क्या जा सकता है? क्या कुछ ऐसा है जो हम मनुष्य स्कूल, कॉलेज, कॉलोनी एवं समाज के तौर पर सामूहिक रूप से कर सकते हैं? हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं? इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं, हम सभी बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के नुकसान का मुकाबला करने के कई तरीके हैं, जैसे फसल चक्रण, जैविक खाद के उपयोग जैसी कृषि पद्धतियों के अपनाने से उत्पादन सुनिश्चित करते हुए मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और प्रदूषण में योगदान देने वाली हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। वनों से केवल ऐसे ही पेड़ों को काटना चाहिए जो पूर्णतया परिपक्व हो चुके हैं तथा जिनका भविष्य में विकास संभव नहीं है। जंगलों को आग से बचाने के लिए समुचित प्रबंध करना चाहिए। कम गाड़ी चलाकर अपने कार्बन पदचिन्ह को कम करें। गाड़ी वायु में हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं और पेड़ ही है जो इस गैस को वायु से हटाते हैं। कम गाड़ी चलाकर हम पेड़ों की मदद करने के साथ साथ वायु गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। कार्बन पदचिन्ह को कम करने के लिए हम दोस्तों या सहकर्मियों के साथ कारपूलिंग से लेकर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक या कागज के बैग के बजाय दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले बैग का इस्तेमाल करें। शिपिंग बॉक्स और रैपिंग पेपर का पुनः उपयोग करें। सेकेंड हैंड किताबें खरीदें या ई बुक्स जैसे डिजिटल विकल्पों का उपयोग करें। पेपरलेस बिलिंग को अपनाएं। कागज रहित बिलिंग पर स्विच करना कागज की खपत को कम करने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। दुकानों, बैंकों इत्यादि कई जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग विकल्प प्रदान करते हैं। डिजिटल स्टेटमेंट का विकल्प चुनकर और अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान करके हम कागज की बर्बादी को कम कर सकते हैं और पेड़ों को बचाने में मदद कर सकते हैं। जितना संभव हो सके कागज को रिसाइकल करें, साथ ही ऐसे उत्पाद खरीदें जो रिसाइकल किए गए हों। अगर हर कोई ऐसा करना शुरू कर दें तो कच्चे माल की जरूरत काफी कम हो जाएगी और इस तरह कम पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरण और जंगलों की स्थिति के बारे में जितना संभव हो सके उतना जानें और दूसरों के साथ भी साझा करें। कागज और लकड़ी के उत्पादों का इस्तेमाल कम करें तो हम काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या को कम करने में मदद कर सकेंगे। दुनिया में हरियाली फैलाने के सबसे आसान और तेज तरीका वृक्षारोपण है। सरकार पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। उनका यह प्रयास तभी सार्थक होगा जब हम सब उसके प्रति गंभीर हो। वन महोत्सव यानी पौधरोपण के कार्यक्रम विकास के नाम पर वनों के विनाश के बीच समाज में वृक्षारोपण के प्रति ऐसी जागरूकता आशा की एक नई किरण जरूर दिखाती है। सिर्फ पौधरोपण करने से ही समस्या का समाधान

नहीं होता। पौधे लगाने के साथ ही उनका संरक्षण भी करना होगा, साथ ही लोगों को पेड़ न काटने के लिए प्रेरित करना होगा। महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है, हम दुनिया में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं उसे पहले हमें खुद पर लागू करना चाहिए। हमें आज यही करने की जरूरत है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, साथ ही पेड़ बनने तक उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। आज हमारे द्वारा की गई यह छोटी सी पहल बढ़ते हुए पेड़ के साथ कल हमारा गर्व बन जाएगी, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को हम दे सकेंगे हरा भरा वातावरण विरासत के रूप में। यदि धरती पर हरियाली होगी तभी हमारा वातावरण हमारे अनुकूल होगा, तभी जीवन में खुशहाली आएगी। तो श्रोताओं, वनों को कटने से रोकें, वृक्षारोपण करें और वसुधा की हरितिमा कायम रखें।

पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्रोताओं, अभी आप धरती की हरितिमा कायम रहे विषय पर श्रीमती गीता सागर की ये पूर्व प्रसारित वार्ता सुन रहे थे। श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में सुने कुछ फिल्मी गीत।

0: मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में ये था आए दिन बहार के फिल्म का गीत, जिसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम से यूं ही जुड़े रहिए, हम लौटेंगे इस अंतराल के बाद।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।

0: मिस सीमा
1: जी,
0: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
0: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
0: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है।

कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं हेमा सरदेसाई और मलेशियन वासुदेवन की आवाज़ों में सपने फिल्म का ये नगमा। AR रहमान के संगीत निर्देशन में तैयार गीत के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया। आइए सुने अनामिका फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर के स्वर में गीत लिखा मजरूह ने।

0: हिमेश रेशमिया और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये था 36 चाइनाटाउन फिल्म का गीत। गीत लिखा सबीर ने तथा इस गीत को संगीतबद्ध किया हिमेश रेशमिया ने। और इस गीत के साथ ही आज का हमारा गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। श्रोताओं, अब होगा समाचारों का प्रसारण, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: चल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया

0: वायु फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारी रिलेशनशिप

0: को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के

0: निचले इलाकों सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है, इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोक सत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to

0: remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टैस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूअल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाई

438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में चंद गज़लें। कार्यक्रम में लीजिए ये पहला कलाम, सुनिए निदा फाजली की।

दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है। कलाम निदा फाजली की आवाज़, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं सरदार अंजुम की लिखी गज़ल। जब कभी तेरा नाम लेते हैं दिल से हम इंतकाम लेते हैं।

कार्यक्रम में अब आइए सुने साहिर होशियारपुरी के अल्फाज। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबा होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है।

0: कार्यक्रम का ये आखिरी कलाम अमीर मिनय की आवाज में। सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता,
1: सरकती सरकती जाए है रुख

मुझे एक लतीफा याद आ गया है। इसी तरह एक

गाना चल रहा था कहीं पे, तो एक शेर पे मुकर्रब की आवाज आई, तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रब की आवाज आई, तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रब की आवाज आई, तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा, लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई। तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए से। आवाज़ें हैं SP बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को शुरू में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म डिस्को डांसर से। बप्पी लाहिरी का गाया व संगीत बद किया इस गीत को लिखा है अनजान ने।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के धुन पर बनी ये है संतोष आनंद के लिखे शब्द, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। फिल्म का नाम है प्रेम रोग।

0: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
1: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
0: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
0: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
1: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
0: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
1: धन्यवाद दीदी।
0: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uvin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अरे वाईफाई, सुनना मेरी बात।
5: हाँ भाई, बोलने का ना।

0: समझ गया भाई, जरूरी है, क्योंकि सेहत बोले तो जिंदगी और सेहत बोले तो खुशहाली।
1: तराने सुहाने कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कसम पैदा करने वाले फिल्म का ये शीर्षक गीत, जिसे गाया है विजय बेनेडिक्ट ने। अनजान के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई बप्पी लाहिरी ने।

श्रोताओ, अभी आपने कसम पैदा करने वाली फिल्म का ये शीर्षक गीत सुना, विजय बेनेडिक्ट के स्वर में अनजान का लिखा गीत, जिसे शुरू में पिरोया था बप्पी लाहिरी ने। ये थी हमारे कार्यक्रम की अंतिम भेंट। इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं TN शेष गोपाल का गायन। इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर तिरुपर कदल और TS वीर राघवन। मृदंगम पर हैं रामानंद, CS मुर्गा भूपति और कंजीरा पर हैं वीरा नागराजन। तो कार्यक्रम में पहले सुनते हैं TN शेष गोपाल का गाया राग आनंद भैरवी, जो मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।

आइए अब सुनते हैं टीएन शेष गोपाल का ही गाया राग वचस्पति, जो आदिताल में निबद्ध है।

अभी आप TN शेष गोपाल का गाया राग वाचस्पति सुन रहे थे, जो आदि ताल में निबद्ध था। आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं TN शेष गोपाल का ही गाया राग तोड़ी, जो आदि ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में TN शेष गोपाल का गायन सुन रहे थे।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा,
1: जी
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि ये गीत संगीत ना होते तो हमारा जीवन कितना बेरंग और हम कितने उदास होते। तो चलिए, इस उदासपन और आपका मनोरंजन करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपके ही पसंद के गाने हम आपको सुनाएंगे। तो देर ना करते हुए लेते हैं

आज का पहला मैसेज जिसे हमें भेजा है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन सेंडे जी ने, और हैं साथ ही प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म हम तुमसे, और इस गीत के पसंदकर्ता हैं दंतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखले लाल वर्मा जी।

श्रोताओं, अभी आपने जिस गाने को सुना, फिल्म था नया दौर, और इस गीत के लिए हमें मैसेज किया था मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी ने। आइए अब सुनते हैं आया सावन झूम के फिल्म का गाना, और इस गीत को पसंद किया है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान छिम्पा और पूजा परिहार जी ने।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: दोस्तों, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम SMS My Choice। यदि और भी कोई श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 9474234000 और लिख भेजिए कार्यक्रम का नाम SMS My Choice, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिखें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म इम्तिहान से। और इस गीत को पसंद किया है हैबलॉक से मनीष जी ने।

अगला गीत है फिल्म प्रोफेसर से, और इस गीत को पसंद किया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी जी ने, पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से। और इसी गाने को हमारे और एक श्रोता जो असम से हैं, हितेंद्र दास जी को हम सुनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि वे हमारे पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी के साथ सुनते हैं ये गीत।

ये है फिल्म हमेशा का गाना, और इस गीत को पसंद किया है चूना भट्टा श्री विजयपुरम से, नसीमा, नीलमणि, मार्गरेट और सुनीता जी ने।

और इस गीत को पसंद किया है श्री विजयपुरम वंडूर से। संगीता समीर, अमिता और ओली ने।

अगला गीत है फिल्म इतिहास से, और इस गीत के लिए हमें मैसेज किया है माया बंदर से किरण, राजेश और कृतज्ञ ने।

दोस्तों, एक बार फिर हम आपको बता दें कि यदि आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000 और लिख भेजिए कार्यक्रम का नाम, SMS माई चॉइस, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिख कर भेजें ताकि हम आपके पसंद के गाने इस कार्यक्रम में शामिल कर पाए। तो आज के कार्यक्रम को अब यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1324वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है

0: ग्रेन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
1: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
0: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
1: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
0: बिल्कुल।
1: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
0: जी।
1: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
0: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी अजीत जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था।

काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
3: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
3: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
3: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
3: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
3: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
3: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
3: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
3: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है

0: अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
2: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
2: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
2: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं। यही नहीं, गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
2: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना। सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
4: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
2: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
2: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
0: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है। वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो वो देखो,
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
0: अरे क्या बाकी और सजीले सवार है। वाह वाह
3: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
4: लगता है जीतने का। ओ वो पहुंच गया, जीत गया, जीत गया, धन्य हो धन्य हो।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी

सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते।

0: गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, अरे हाँ, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
1: चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो। ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दें, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो,
3: क्या
2: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ,
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ,
3: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
7: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1324वीं कड़ी सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म जानवर से। इस गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार का गाया एक गीत। फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। मजरू के शब्द हैं, SD बर्मन ने संगीत दिया है।

0: जमुना। इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। तर्ज बनाई है नौशाद ने और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: Stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हसरत जयपुर का लिखा गीत है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है तीसरी कसम, स्वर मुकेश के हैं,

अब सुनिए फिल्म रंगोली में किशोर कुमार का गाया गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

अब सुनते हैं हरजाई फिल्म का गाना। रचना विट्ठल भाई पटेल की है और इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

लेक मंदिर। कार्यक्रम के अंत में सुनिए इस फिल्म का एक गीत। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रॉन्ग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
1: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെഡ്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य

राज्यों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित करने और युवाओं में देशभक्ति की भावना का प्रसार करने का कार्य कर रहा है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी दिन में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भाग, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेकाल और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के सत्र में आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त देखी गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब सुनते हैं रेनू और विजय चौधरी की गाई ये गजल, कैसर उल जाफरी का कलाम है।
1: खवातीन हजरात, जो गजल अब आपकी खिदमत में हाजिर है उसके मुतालिक मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इसकी बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि दो चाहने वाले दिल जो एक दूसरे से हजारों मील के फासले पर हैं, जिनको मिलने का कोई जरिया नहीं, बातचीत का कोई साधन नहीं, वो खतों के जरिए ही तो बात करते हैं एक दूसरे से। तो यूँ समझ लें कि खत इस गजल का हीरो या हीरोइन जो भी आप कहें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए विजय चौधरी को, रचना जिगर मुरादाबादी के हैं।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में रेनू और विजय चौधरी की गाई चंद गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब सुनिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, आपके नाम फिल्मी पैगाम।

आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9474234000 और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। तो हमें लिख भेजिए कार्यक्रम का नाम, आपके नाम, फिल्मी पैगाम, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता अवश्य लिखें। तो चलिए देर ना करते हुए लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे हमें भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार जी ने। ये सुनना चाहते हैं चित चोर फिल्म का गाना।

आइए अब सुनते हैं वक्त फिल्म का ये गाना, और इस गाने के लिए हमें फरमाइश की है नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन, मंगला बैन और राजेंद्र जी ने।

आइए अब सुनते हैं सिंदूर फिल्म का गाना। इस गीत की फरमाइश की है नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वोमिका और वाणी थांदी जी ने।

ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चौंसलिया आदर्श सार्थक अलौकिक चौंसलिया ये सुनना चाहते हैं चौदहवीं का चांद फिल्म का गाना।

ये था फिल्म अदालत का गाना, और इस गीत के लिए हमें फरमाइश की थी महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मेहत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय जी ने। आइए अब सुनते हैं गुलामी फिल्म का ये गाना।

इस गीत को पसंद किया है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा एक कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Football Association has announced the Indian contingent in both men's and women's category to represent India in the pro category at the Pickleball World Cup 2026. The competition will be held at Da Nang in Vietnam from August 30th to September the 6th. Harsh Mehta, a recurring name on the international pickleball circuit, will be leading the charge. Arjun Singh, Anish Walian and Aman Patel have also made the cut in the men's category. Mihika Yadav, Alia Ibrahim, Pearl Amal Sadiwala and Naomi Amal Sadiwala will make up the contingent on the women's side. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the afternoon session today. The Sensex climbed 565 points to 77,069, while the Nifty added 168 points to 24,050 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Australia signed landmark deals on uranium supply and dedicated critical minerals corridor. Australia-India partnership on cyber critical technologies and supply chains becomes operational. Prime Minister Narendra Modi holds annual summit with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne. Says bilateral relationship entered an expansive era anchored in deep mutual trust. Vice President C.P. Radhakrishnan unveils national mission for sustainable use of high seas fishery resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Kanaklata. भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए. साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता. श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया. मॉनसून पूरे देश में सक्रिय. लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित. उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना. और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया. हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया.
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं. पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है. जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया.
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है. एजेंडा वनडे जैसा फोकस है. डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी.
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है. संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं. शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज

0: कार्य पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्य घर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
1: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: And critical minerals.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नाव के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम

0: को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
1: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
0: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
2: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
3: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
2: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय

0: की घोषणा करती है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में मौसम ठीक होने के कारण मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय दोपहर के 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: भी चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी। Online applications are invited from unmarried men and women candidates for grant of short service commission in executive, education and technical branch. Last date for submission of online application is 27 July 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar.
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने वे इस प्रकार से हैं: दिल का रिश्ता, राज, दिल का क्या कसूर, सपनों का सौदागर, दिल लगी, हमारा दिल आपके पास है, मुकद्दर का सिकंदर, हंगामा, मेरे जीवन साथी, दिल है कि मानता नहीं, और एक रिश्ता। इसी के साथ ही आज का नॉनस्टॉप म्यूजिक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

ये है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। इस समय 3:30 हुए हैं। अब सुनिए, यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, आज के यूं ही गाते रहो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है। यह केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि सीखने, संघर्ष करने, प्रेम करने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर है। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है, लेकिन सभी के जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं।

ज़िंदगी हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है, कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती है और सफलताएँ आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। जीवन में धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी से कार्य करना, परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना तथा अच्छे संस्कार अपनाना एक सार्थक जीवन की पहचान है।

जिंदगी एक सुंदर यात्रा है। इसमें आने वाली चुनौतियों का साहस और आशा के साथ सामना करना चाहिए। यदि हम समय का सदुपयोग करें, अच्छे कर्म करें और सकारात्मकता दृष्टिकोण रखें, तो हमारा जीवन सफल, सुखी और प्रेरणादायक बन सकता है।

0: कुछ कमी सी लगती है।
1: जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, कठिन परिश्रम करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कदम होती है। हमें अपनी गलतियों से सीखकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए।

दोस्तों, यूं ही गाते रहो कार्यक्रम को अब यहीं पर देते हैं विराम। अब मुझे दीजिए अनुमति।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Balanced diet महत्वपूर्ण रूप निभाती है, इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किन फूड्स में फाइबर पाया जाता है और इनमें क्या शामिल करना चाहिए। फाइबर से भरपूर डाइट के साथ आपको बाकी पोषण तत्वों का भी ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से आप फाइबर फूड्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिया बीन्स में डाइटरी फाइबर होता है, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन है। चिया बीन्स पाचन शक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। चिया बीन्स का सेवन करने से शरीर में अच्छा फैटी एसिड आता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सामान्य बना रहता है। एवोकाडो फ्रूट में भी डाइटरी फाइबर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ सेहतमंद फैट से भरपूर होता है, जो वजन सामान्य और दिल सेहतमंद रखने में मदद करता है। इसमें विटामिन के और पोटेशियम भी पाया जाता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स माने जाते हैं। यह शरीर में फ्री रेडिकल के द्वारा किए जाने वाले नुकसान होने से रोकते हैं। हाई फाइबर फूड लिस्ट में जुड़ी अधिक जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। राजमा और फलिया डाइटरी फाइबर से भरपूर होती है, इनमें प्रोटीन भी भारी मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम राजमा में आपको 6 ग्राम फाइबर मिलता है और पूरे दिन में 25 से 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि राजमा एक अच्छा ऑप्शन है। राजमा एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन पाया जाता है, जिससे मांसपेशियों का विकास और फैट बर्न एक साथ हो जाता है। छोले में हाई फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, राजमा के मुकाबले छोले में ज़्यादा फाइबर होता है। 100 ग्राम छोले में 8 ग्राम फाइबर पाया जाता है। फलियां प्रोटीन, फाइबर, मिनरल और विटामिन से भरपूर होते हैं और उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में बादाम में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है। बादाम में फाइबर के साथ साथ कई सारे पोषण और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, जैसे कि विटामिन ई, मैंगनीज और मैग्नीशियम, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए और दिल की सेहत सुधारने के लिए बादाम को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ब्रोकली अधिकतर हरी सब्जियों में सही मात्रा में डाइटरी फाइबर पाया जाता है और साथ ही विटामिन ई भी पाया जाता है, जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रोकली को हाई एकॉर्बोनिक नाइट्रेट के लिए जाना जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और कसरत अच्छे से करने में मदद करता है। क्विनोआ डाइटरी फाइबर मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है। जो लोग ग्लूटेन फ्री फूड खाते हैं उन लोगों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। क्विनोआ में मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। काले सेम एक तरह की फली है, जिनमें डाइटरी फाइबर भारी मात्रा में पाया जाता है। ये फाइबर के साथ साथ मिनरल जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। मैग्नीशियम कैल्शियम को तोड़ने का काम करता है, जिससे हड्डियों में अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। आयरन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है, जिससे खून में ऑक्सीजन का बहाव बना रहता है और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। सोयाबीन में प्रोटीन और सामान्य स्तर पर फाइबर पाया जाता है, जिसे आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। सोयाबीन विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार कई तरह से बना सकते हैं। सोयाबीन के कई प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सोया का आटा, टोफू, सोया दूध, सोयाबीन का तेल आदि। इन सभी प्रोडक्ट को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खाने के पौष्टिक आहार और फाइबर बढ़ा सकते हैं। आर्टिचोक में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ फाइबर भी पाया जाता है। एक मीडियम आर्टिचोक में 7 ग्राम डाइटरी फाइबर पाया जाता है। कद्दू में फाइबर के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन के और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम। सामान्य रूप से कद्दू खाने से आपको पूरे दिन का 10% फाइबर मिलता है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये सब्जी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने में अवश्य मदद करती है। एक सेब खाने से पूरे दिन का 16

0: प्रतिशत फाइबर मिलता है, जिससे आप बेशक डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। सेब खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ रहता है और वजन कम होने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा सेब में विटामिन सी और विटामिन ए भी मौजूद होते हैं, जिससे ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से शरीर को बचाकर रखता है। हाई फाइबर चाट में केले को भी शामिल करना जरूरी है। एक मीडियम साइज केले में 9% फाइबर होता है, जो आपके पूरे दिन के लिए काफ़ी है। इसके अलावा केले में पोटेशियम भी होता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। पोटेशियम शरीर में ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के आसार को कम करने में मदद करते हैं। जब आप कुछ सेहतमंद खाने को ढूंढ रहे हैं तो खट्टे फलों को बिल्कुल न भूलें। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कई सारे फायदे हैं। एक संतरा खाने से आपको पूरे दिन में 10% फाइबर प्राप्त होता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। कुट्टू का आटा क्विनोवा की तरह कुट्टू का आटा ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिसमें डाइट्री फाइबर होता है जो सेहतमंद लाइफस्टाइल देता है। 100 ग्राम कुट्टू का आटा खाने से आपको पूरे दिन का 25% फाइबर प्राप्त होता है। ये मांसपेशियों के विकास के लिए भी जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म और फैट बर्न करने की बात हो तो हाई फाइबर डाइट का होना जरूरी है। फाइबर का सेवन से नियमित रूप से करना चाहिए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम फाइबर का सेवन करना चाहिए। फाइबर पचने में ज्यादा समय लगता है, इसीलिए ज्यादा मात्रा में फाइबर खाने से वजन बढ़ भी सकता है। फाइबर अपनी डाइट में शामिल करने के साथ साथ कसरत रोजाना करना शुरू कर दे। अगर आप फाइबर से भरपूर डाइट के फायदे जानने लगे तो आप सेहतमंद रहने की राह पर आ जाएंगे। जैसे कि आपको पता है, अधिकतम बीमारी पेट से शुरू होती है। फाइबर का सेवन नियमित रूप से करने से पेट स्वस्थ रहता है, जिससे अधिकतर बीमारी से दूर रहते हैं। इसीलिए फाइबर के साथ सभी पौष्टिक तत्व डाइट में शामिल करने की कोशिश करें। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही संपन्न होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की सातवीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4:40 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम की जानकारी। श्रोताओं, सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी 4:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों के शाम। शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम में ऋषि कार्यक्रम आप सुनेंगे वेला नुलगम। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा चिरंतनी। इसके अलावा रविंद्र संगीत का आप आनंद ले पाएंगे। किसान वाणी कार्यक्रम होगा शाम 6:00 जिसमें आप वन महोत्सव पर ऋषिभा मिश्रा से वार्ता सुनेंगे। महफिले कवाली शाम 6:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। शाम 7:15 पर मौसम की जानकारी जलियानों का

यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीत शाम 7:20 पर, युवाओं के लिए युवाणी कार्यक्रम संध्या 7:30 पर, पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। इसके अलावा अभिनय की परिभाषा गुरुदत्त इस विषय पर वार्ता सुनेंगे। रात 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरव गान आप सुनेंगे एवं रात 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर आप सुनेंगे इनसाइट्स, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और अब कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सभा की शुरुआत होगी शाम 5:30 पर प्रभाती वंदना के साथ। 5:55 पर आप सुनेंगे एग्री टिप्स। सवेरे 6:10 पर जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और सवेरे 6:15 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष। रामचरित मानस गान की 295वीं कड़ी आप सुनेंगे सवेरे 6:30 पर। 6:40 पर कार्यक्रम गांधी चर्चा की दूसरी कड़ी। मौसम की जानकारी, कार्यक्रमों का विवरण सवेरे 6:50 पर। सवेरे 7:00 जन सूचनाएं व 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी सवेरे 7:15 पर और इसी वक्त FM 100.9 MHz पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सवेरे 7:30 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम। सवेरे 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आप मनु पुरुषोत्तम को सुनेंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सवेरे 9:00। पर शास्त्र संगीत कार्यक्रम में उस्ताद अब्दुल लतीफ खान का हिंदुस्तानी शैली में सारंगी वादन प्रसारित किया जाएगा। दिन में 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर की रिकॉर्डिंग। दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1325वीं कड़ी। निकोबारी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर, जिसमें आप लोक गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु कार्यक्रम में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। 12:30 पर होगा मलयालम कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर महफिले कवाली, जिसमें आप सुनेंगे अर्शी बेगम, यूसुफ आजाद कवाल और महेंद्र कपूर को। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ होगी पहली सभा समाप्त। वहीं FM 100.9 MHz पर स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे। 2:30 पर आप सुनेंगे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। शाम 5:00 हम फिर हाजिर होंगे अपनी दूसरी सभा के साथ तमिल कार्यक्रम लेकर, जिसमें आप नेशनल फिश फार्मर्स डे पर चर्चा सुनेंगे। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे बांग्ला कार्यक्रम, जिसमें नजरुल गीत प्रसारित किए जाएंगे। शाम 6:00 कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर जय सुंदर से बातचीत का विषय रहेगा बकरियों में वर्षाकालीन बीमारियां। शाम 6:30 पर समाचार तरंगिनी आप सुनेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की कड़ी 8 आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। कार्यक्रमों का विवरण शाम 6:55 पर। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया शाम 7:20 पर। संध्या 7:30 पर युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स। रात 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 पर रोजगार समाचार व गौरव गान और रात 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आते हैं। इसके अलावा रात 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट और 9:30 पर करंट अफेयर्स तथा इसी बीच रात्रि 10:00 विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत।

अभी आप कार्यक्रम की जानकारी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम की 4:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहारों की शाम।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल मांगे मोर से।

0: अभी आप बहारों की शाम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वणकम तमिल अमुदम वणकम नेर्गले।

0: अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बांग्ला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्र থেকে শুরু করছি আজকের বাংলা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে মিডিয়াম ওয়েভ 438.6 মিটার অর্থাৎ 684 কিলো হার্টজ থেকে।

0: अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

0: नमस्कार, किसान मणि के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। किसान साथियों, कार्यक्रम का शुभारंभ आज के खूबसूरत विचार के साथ। साथियों, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये विचार हम अपने किसान साथियों को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे किसान साथी बहुत मेहनत करते हैं। दिन रात खेतों में वे लगे रहते हैं और शाम को थक हार कर घर आते हैं। किसानों की मेहनत को हम सलाम करते हैं। आइए खूबसूरत विचार को लिए आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। भाइयों, हमारा आज का प्रश्न है, मछली पालन तालाबों में चूने का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न बहुत सरल है, हमारे किसान साथी मछली पालन करते ही हैं। प्रश्न एक बार फिर सुने, मछली पालन तालाबों में चूने का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। कार्यक्रम के तहत इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक

0: किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।

0: किसान साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जुलाई महीने में हम वन महोत्सव मनाते हैं। पहले सप्ताह का आयोजन किया जाता है, फिर पूरे महीने हम इस वन महोत्सव को मनाते हैं ताकि वन के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। साथियों, वन हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं जो शुद्ध हवा देते हैं और जलवायु को संतुलित रखते हैं। वन महोत्सव हमें याद दिलाता है, पेड़ लगाना और उनका संरक्षण करना हर नागरिक का सामूहिक कर्तव्य है। किसान साथियों, वन महोत्सव यानी पर्यावरण जागरूकता और वृक्षारोपण, इस विषय पर प्रकाश डाल रही हैं कुमारी ऋषिका मिश्रा। आइए सुनते हैं उनसे उनकी ये वार्ता।
1: प्रकृति सृष्टि की सबसे अनमोल और अद्भुत रचना है। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण प्रकृति पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, वन, पशु पक्षी और वनस्पतियाँ मिलकर एक ऐसा संतुलित तंत्र बनाते हैं जिसके कारण जीवन संभव हो पाता है। यदि इन प्राकृतिक तत्वों में से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ जाए तो संपूर्ण जीवन प्रभावित होने लगता है। इसलिए प्रकृति केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। मानव सभ्यता के विकास के प्रत्येक कहानी जंगलों, नदियों और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई है। आदिकाल से मनुष्य ने प्रकृति की गोद में रहकर जीवन जीना सीखा, भोजन प्राप्त किया, आश्रय बनाया और अपनी संस्कृति का विकास किया। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माता के समान सम्मान दिया गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी को भूमाता, नदियों को देवी और वृक्षों को देव स्वरूप कहा गया है। यह केवल धार्मिक आस्था नहीं थी बल्कि प्रकृति संरक्षण का एक अत्यंत वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण था। हमारे पूर्वज जानते थे कि यदि मनुष्य प्रकृति का सम्मान करेगा तभी प्रकृति भी उसका पालन पोषण करेगी। इसी कारण पीपल, बरगद, नीम, तुलसी, आंवला, बेल और केले जैसे वृक्षों के प्रति प्रेम और संरक्षण की भावना उत्पन्न होती है। आज का समय आधुनिक विज्ञान और तकनीक का युग है। मनुष्य ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े उद्योग, आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है। किंतु इस विकास की दौड़ में प्रकृति को सबसे अधिक हानि पहुंची है। विशाल जंगलों को काटकर शहर बनाए गए, नदियों को प्रदूषित किया गया, पर्वतों का अत्यधिक दोहन हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन लगातार बिगड़ता गया। आज विश्व जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जैव विविधता के संकट जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। हिमालय सहित विश्व की अनेक हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है जिससे तटीय क्षेत्रों पर खतरा मंडरा रहा है। वर्षा का चक्र असंतुलित हो गया है। कहीं अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन सभी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण वनों की निरंतर कटाई और पर्यावरण का असंतुलन है। ऐसी परिस्थितियों में वृक्षारोपण केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन चुका है। एक विकसित राष्ट्र वही कहलाएगा जो अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए विकास करे। यदि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को महत्व नहीं दिया गया तो भविष्य में जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत में वन महोत्सव सप्ताह की शुरुआत की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद यह अनुभव किया गया कि यदि देश के वन सुरक्षित नहीं रहे तो कृषि, जल, जलवायु और मानव जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न होगा। इसलिए वर्ष 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की। उनका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं था बल्कि लोगों के मन में वृक्षों के प्रति प्रेम और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना था। प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वर्षा ऋतु के दौरान वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। इस समय पौधों की

वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण होता है, इसलिए लगाए गए पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक रहती है। देश भर में सरकारी विभाग, विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा लाखों नागरिक वृक्षारोपण करते हैं। अनेक स्थानों पर पर्यावरण जागरूकता रैलियां, निबंध प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि वृक्ष केवल प्रकृति की शोभा नहीं है, बल्कि मानव जीवन के रक्षक हैं। वन महोत्सव सप्ताह हमें यह संदेश देता है कि केवल एक सप्ताह तक पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सफलता तब है जब लगाए गए पौधों की वर्षों तक देखभाल की जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकृति संरक्षण का संस्कार दिया जाए। यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसकी जिम्मेदारी निभाए, तो आने वाले वर्षों में भारत पुनः हरित और समृद्ध बन सकता है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात जो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण हमें चारों ओर से घेरे रहता है, वही पर्यावरण कहलाता है। इसमें केवल पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और जीव जंतु ही शामिल नहीं हैं, बल्कि मनुष्य का सामाजिक जीवन, संस्कृत परंपराएं और आर्थिक गतिविधियां भी पर्यावरण का ही भाग हैं। वास्तव में पर्यावरण एक ऐसा विशाल तंत्र है जिसमें प्रत्येक जीव और प्रत्येक प्राकृतिक तत्व एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि इस तंत्र के किसी एक भाग को क्षति पहुंचती है, तो उसका प्रभाव पूरे पर्यावरण पर दिखाई देता है। मानव जीवन और पर्यावरण का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। वह जो भोजन करता है, जो जल पीता है, जिस वायु में सांस लेता है और जिस भूमि पर रहता है, वह सब पर्यावरण की ही देन है। यदि पर्यावरण स्वच्छ और संतुलित होगा, तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा, कृषि समृद्ध होगी और समाज का विकास भी स्थायी होगा। इसके विपरीत यदि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए, तो मनुष्य का स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधना सभी प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। प्राचीन समय में मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा संतुलन था। लोगों की आवश्यकताएं सीमित थीं और वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझ कर करते थे। जंगलों की रक्षा की जाती थी, नदियों को पवित्र माना जाता था और जल का अत्यंत सावधानी से उपयोग किया जाता था। किंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और औद्योगिक क्रांति ने विकास की गति तेज की, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, शहरों का विस्तार हुआ, लाखों वाहन सड़कों पर आए और जंगलों की कटाई तेजी से होने लगी। धीरे धीरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगा और प्रदूषण मानव जीवन की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बन गया। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक तत्वों का इस प्रकार दूषित हो जाना कि वे जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए हानिकारक बन जाएं। आज प्रदूषण केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आधुनिक जीवन शैली, अत्यधिक उपभोग, प्लास्टिक का उपयोग, रासायनिक पदार्थों का बढ़ता प्रयोग और ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है। सबसे पहले यदि वायु प्रदूषण की बात करें, तो यह आज विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय संकट बन चुका है। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, मोटर वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें, कोयले और पेट्रोलियम का अत्यधिक उपयोग तथा जंगलों की आग वातावरण को प्रदूषित कर रही है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म धूल कणों की मात्रा लगातार बढ़ रही है। इसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दमा, फेफड़ों के रोग, एलर्जी, हृदय रोग और श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। जल प्रदूषण भी एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुका है। नदियों, झीलों और तालाबों में औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू गंदगी, प्लास्टिक कचरा और रासायनिक पदार्थ लगातार मिलाए जा रहे हैं। इसके कारण पीने योग्य जल की मात्रा घटती जा रही है। दूषित जल के कारण हैजा, टाइफॉइड, पीलिया तथा अनेक संक्रामक रोग फैलते हैं। आज अनेक नदियां जो कभी जीवनदायिनी मानी जाती थीं, प्रदूषण के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। यदि जल स्रोतों को सुरक्षित नहीं रखा गया, तो भविष्य में स्वच्छ जल की भारी कमी हो सकती है।

0: सकती है। भूमि प्रदूषण भी धीरे धीरे गंभीर रूप लेता जा रहा है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। प्लास्टिक और अन्य गैर जैविक कचरे के कारण भूमि की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शहरों में बढ़ते कूड़े कचरे के ढेर न केवल भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं बल्कि अनेक रोगों को भी जन्म देते हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण आधुनिक जीवन की एक ऐसी समस्या है जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। वाहनों के हॉर्न, मशीनों का शोर, लाउडस्पीकर, निर्माण कार्य और पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अत्यधिक शोर से मानसिक तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप तथा सुनने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शांत वातावरण भी मानव स्वास्थ्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी स्वच्छ वायु और स्वच्छ जल। आज पर्यावरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन है। पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के वातावरण में रोक लेती हैं, जिससे तापमान बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वर्षा का चक्र बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। कभी भीषण गर्मी, कभी अत्यधिक वर्षा, कभी सूखा और कभी चक्रवात जैसी घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। इन सभी समस्याओं के पीछे सबसे बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। जब वृक्षों की संख्या कम होती है तब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, वर्षा का संतुलन बिगड़ जाता है और भूमि अपनी नमी खोने लगती है। यही कारण है कि पर्यावरण वैज्ञानिक आज वृक्षारोपण को जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे प्रभावी उपाय मानते हैं। एक विकसित समाज वही है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करे और आने वाले पीढ़ियों के लिए उन्हें सुरक्षित रखे। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यावरण की संरक्षा केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के प्रति संवेदनशील नहीं बनेगा, तब तक पर्यावरण संरक्षण के प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सकते। यह हमें केवल पौधे लगाने की प्रेरणा नहीं देता बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित और जिम्मेदार जीवन जीने का संदेश भी देता है।
1: किसान भाइयों, अभी आपने वन महोत्सव, पर्यावरण जागरूकता और वृक्षारोपण पर वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी कुमारी ऋषिका मिश्रा। किसान साथियों, वन महोत्सव हर वर्ष हम मनाते हैं और धरती को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प करते हैं। साथियों, हम सिर्फ इसी माह को वन महोत्सव मना लेने पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें हमेशा पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, पेड़ लगाने पर जोर देना चाहिए, तभी जा करके हम अपनी प्रकृति को एक सुंदर रूप दे पाएंगे। किसान भाइयों, अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं संगीत की ओर और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था कि मछली पालन तालाबों में चूने का प्रयोग क्यों किया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है मछली पालन तालाबों में पानी की अम्लीयता कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी।

0: किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: भाइयों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिले कवाली। श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली कवाली फिल्म निकाह से आवाज सलमा आगा की।

कृष्णा विजेता और श्रद्धा पंडित की आवाज में अभी आपने ये कव्वाली सुनी फिल्म दीवार से। और अब प्रस्तुत है बरसात की रात से ये कव्वाली ए हरिहरन, मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति, सैयद साबरी और साथियों की आवाज।

श्रोताओं, इसी कवाली के साथ कार्यक्रम महफिल कवाली यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7 बजे हैं।

श्रोताओं, अब आपको आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, शाम 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीत आप सुनेंगे शाम 7:20 पर। युवाओं के लिए युवाणी कार्यक्रम संध्या 7:30 पर। पत्रिका कार्यक्रम होगा युवा संसार। इसके अलावा अभिनय की परिभाषा, गुरुदत्त, इस विषय पर वार्ता होगी। रात 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरव गान आप सुनेंगे। एवं रात 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं।

श्रोताओं, इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर आप सुनेंगे इनसाइट, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:05 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस अंतराल के बाद।
1: स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन, आइए मिलकर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। गीला सूखा सैनिटरी और घरेलू खतरनाक कचरे को 4 भागों में अलग करें। कचरा न जलाएं, न इधर उधर फेंकें। अधिक जानकारी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-2739 पर संपर्क करें। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के कई ऐतिहासिक समझौतों पर सहमति बनी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि और किसानों के हित को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। 77वें वन महोत्सव के अंतर्गत निशुल्क पौध वितरण से लेकर सुरक्षित क्षेत्रों में रोपण तक वन विभाग व्यापक हरित अभियान चलाएगा और औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं से भरपूर अंडमान कोकम को फल फसल के रूप में विकसित करने की दिशा में ICAR ने बड़ी पहल की। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 1,000,000 लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन टी ट्वेंटी जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिलिंग के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। अखिल भारतीय किसान सभा अंडमान एवं निकोबार राज्य समिति के अध्यक्ष डॉ. गौरंगा मांझी तथा संयुक्त सचिव पी. सत्यपाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुख्य सचिव से मुलाकात कर द्वीपों के किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने कृषि विभाग के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी वाले उर्वरक एवं कीटनाशकों की निर्बाध आपूर्ति, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, भूमि की न्यूनतम सीमा की शर्त हटाकर सभी किसानों को सब्सिडी पर उर्वरक देने तथा विभागीय उर्वरकों की बाजारी रोकने की मांग उठाई। इसके अलावा किसानों से खरीदे जाने वाले दूध का खरीद मूल्य बढ़ाने, मत्स्य विभाग द्वारा मछली बीज उपलब्ध कराने, सुपारी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित करने और परिपक्व छिलका रहित नारियल पर MSP लागू करने की मांग की भी की गई। ज्ञापन में निजी व्यक्तियों एवं फर्मों द्वारा उर्वरक कीटनाशकों के व्यापार पर रोक लगाने, दक्षिण अंडमान के सुनामी प्रभावित किसानों को वैकल्पिक कृषि भूमि आवंटित करने तथा सभी भूमिहीन द्वीपवासियों को भूमि उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव के साथ इन सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रशासन इन मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है वन महोत्सव और अखिल भारतीय किसान सभा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा द्वीप समूह में 77वें वन महोत्सव का आयोजन 1 जुलाई से 31 जुलाई तक किया जा रहा है। इस अवसर पर वन विस्तार एवं प्रचार प्रभाग हेडो की नर्सरियों से विभिन्न प्रजातियों के पौधे आमजन एवं संस्थाओं को निशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही सुरक्षित एवं घेराबंदी वाले क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। विभाग ने सभी सरकारी विभागों, संगठनों, संस्थानों, सामुदायिक संगठनों तथा ऐसे इच्छुक व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है जिनके नियंत्रण में सुरक्षित अथवा चार दीवारी से घिरे भूखंड उपलब्ध है। ऐसे स्थानों पर विभाग द्वारा निरीक्षण के बाद पौधारोपण कराया जाएगा। इच्छुक विभाग, संगठन अथवा समुदाय वन विस्तार एवं प्रचार रेंज हेडो कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर 9474221485 पर सूचना दी जा सकती है अथवा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया जा सकता है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही पौधारोपण की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने में सहयोग करने की अपील की है। दक्षिण अंडमान में ही प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म स्थानिक पौधे गासिरनिया धनिका रियेंसिस, जिसे अब अंडमान कोकम नाम दिया गया है, के संरक्षण और व्यावसायिक उपयोग की दिशा में ICAR केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान श्री विजयपुरम ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 1993 में इस प्रजाति की खोज के समय इसका केवल एक ही पौधा ज्ञात था। वर्ष 2015 से संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसके संरक्षण तथा खाद्य, औषधि एवं अन्य उद्योगों में संभावनाओं पर व्यवस्थित शोध शुरू किया। संस्थान ने प्रभावी प्रबंधन तकनीक विकसित कर 2000 से अधिक पौधे तैयार किए। यह प्रजाति हाइड्रोक्सी सिट्रिक अम्ल, एंथोसाइनिन, फैटी एसिड और फिनोलिक यौगिकों जैसे औद्योगिक एवं औषधीय महत्व के तत्वों का समृद्ध स्रोत है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे द्वीपों की संभावित फल फसल के रूप में अनुशंसित करते हुए अंडमान कोकम नाम दिया है। यह शोध डॉक्टर पूजा बोहरा और डॉक्टर अजीत अरुण वामन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के वित्तीय सहयोग से किया। संस्थान के निदेशक कार्यवाहक डॉक्टर जयसुंदर ने इस उपलब्धि को द्वीपों की आदित्य

जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बैफल रेंज और चिंते लॉन्ग रेंज में कल फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास मुख्यालय के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। अभ्यास के मद्देनजर संबंधित सैन्य इकाइयों एवं विभागों को आवश्यक समन्वय के लिए सूचना जारी की गई है। सैन्य अधिकारियों ने आम जनता से फायरिंग अभ्यास के दौरान निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और संबंधित क्षेत्र से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन में रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के कई ऐतिहासिक समझौतों पर सहमति बनी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कृषि और किसानों के हित को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। 77वें वन महोत्सव के अंतर्गत निशुल्क पौध वितरण से लेकर सुरक्षित क्षेत्रों में रोपण तक वन विभाग व्यापक हरित अभियान चलाएगा और औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं से भरपूर अंडमान कोकम को फल फसल के रूप में विकसित करने की दिशा में ICAR ने बड़ी पहल की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं।

श्रोताओं, सबसे पहले आपको मौसम की जानकारी दे दें। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ एक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। और अब जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

एमवी हडबे कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायबंदर होते हुए डिगलीपुर जाएगा तथा डिगलीपुर से चलकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा 11 तारीख को सवेरे 7 बजे। एमवी कालीघाट श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान जाएगा कल रात 9 बजे तथा लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा 11 तारीख को सवेरे 8 बजे। एमवी कालीघाट 23 तारीख को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान, कार्निकोबार, चौरा, तेरेसा, कचाल और ननकौरी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा आरंभ करेगा और कैम्बल बे से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 26 तारीख को दोपहर 12 बजे। जलयान नालंदा 14 तारीख को श्री विजयपुरम से सवेरे 9 बजे ननकौरी होते हुए कैम्बल बे जाएगा एवं कैम्बल बे से ननकौरी होते हुए श्री विजयपुरम आएगा 16 तारीख को सवेरे 8 बजे। एमवी रंगत कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत जाएगा और रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही दोपहर 12 बजे। एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा और शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा कल ही सवेरे 8:30 पर। एमवी जॉली बॉय कल सवेरे 6:15 पर स्वराजदीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा एवं कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा तथा दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराजदीप के लिए चलेगा और दोपहर बाद 2:30 पर स्वराजदीप से श्री विजयपुरम आएगा। एमवी बाराटांग स्वराजदीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से जाएगा एवं स्वराजदीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा दोपहर 2 बजे तथा दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी कमोटा कल

दोपहर बाद 2:30 पर श्रीविजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा तथा कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम वापस आएगा। MV स्ट्रेट आइलैंड श्रीविजयपुरम से कल शाम 5 बजे स्वराज द्वीप जाएगा तथा 11 तारीख को स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम आएगा सवेरे 5:30 पर। अभी आप सुन रहे थे जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

और अब जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 112-03192-232100, 03192-233077 और 03192-232400। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवाओं के लिए कार्यक्रम युवाणी।

0: युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सफलता कोई मंजिल नहीं जो अचानक मिल जाए, या तो निरंतर किए गए छोटे छोटे परिश्रमों का वो खूबसूरत परिणाम है जो एक दिन दुनिया को हैरान कर देता है। दोस्तों, इसी विचार के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज गुरुवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में गुरुदत्त का नाम अत्यंत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। वे केवल एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक महान निर्देशक, निर्माता और लेखक भी थे। उन्होंने अपनी कला, संवेदनशीलता और अनोखी सोच से भारतीय फिल्मों को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी फिल्मों में समाज की वास्तविकता, मानव भावनाएं और जीवन के गहरे सत्य देखने को मिलते हैं। इसी कारण आज भी उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में गिना जाता है। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उनका पूरा नाम वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोण था। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और अभिनय में रुचि थी। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत फिल्म उद्योग में एक कोरियोग्राफर के रूप में की, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें जल्द ही अभिनय और निर्देशन के क्षेत्र में पहचान दिलाई। दोस्तों, गुरुदत्त ने अपनी फिल्मी जीवन में कई प्रसिद्ध और यादगार फिल्में दी। उनकी प्रमुख फिल्मों में प्यासा, कागज के फूल, साहिब बीवी और गुलाम तथा चौधवी का चांद शामिल हैं। उनकी फिल्म प्यासा को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म में उन्होंने समाज की कठोर सच्चाइयों और एक कलाकार की पीड़ा को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया था। गुरुदत्त की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनमें भावनात्मक गहराई और कलात्मक सुंदरता का अद्भुत मेल देखने को मिलता था। वे अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज के दुख, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं को दर्शाते थे। उनके अभिनय में सादगी और गहराई होती थी जो दर्शकों के दिलों

को छू जाती थी। हालांकि गुरुदत्त का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी जीवन में ऐसी उपलब्धियां प्राप्त की जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, उनका निधन 10 अक्टूबर 1964 को हुआ, परंतु उनकी कला आज भी जीवित है। उनके योगदान ने भारतीय सिनेमा को अमूल्य धरोहर प्रदान की है, इसलिए गुरुदत्त को भारतीय फिल्म जगत का एक अमर सितारा कहा जाता है।

दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बैंकिंग और परिवहन जैसे अनेक क्षेत्रों में तेजी से बदलाव ला रही है। AI की सहायता से कठिन और समय लेने वाले कार्य कम समय में अधिक सटीकता के साथ पूरे किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी विषय में हम आपको सुनवाते हैं रूपक AI क्रांति।

मानव सभ्यता का इतिहास निरंतर विकास और नवाचार का इतिहास रहा है। पाषाण युग से लेकर डिजिटल युग तक मनुष्य ने हर दौर में

नई तकनीकों का निर्माण किया है जिसने जीवन को सरल, तेज और अधिक प्रभावी बनाया है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का युग है। यह केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांति है जो हमारे सोचने, काम करने और जीने के तरीकों को पूरी तरह बदल रही है। AI क्रांति संभावनाओं का एक नया संसार लेकर आई है जिसमें सीमाएं लगभग समाप्त हो रही हैं और मानव क्षमता का विस्तार हो रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है जिसके माध्यम से मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें। एआई का विकास 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन पिछले एक दशक में इसमें अभूतपूर्व तेजी आई है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क जैसी तकनीकों ने एआई को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आज एआई हमारे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, यहां तक कि हमारे घरों के उपकरणों में भी शामिल हो चुका है।

AI ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। अब छात्र अपनी गति और क्षमता के अनुसार पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म AI की मदद से छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर उन्हें विशेष सामग्री प्रदान करते हैं। वर्चुअल क्लासरूम और स्मार्ट ट्यूटर छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देते हैं। इससे शिक्षा अधिक सुलभ, रोचक और प्रभावी हो गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का उपयोग जीवन रक्षक सिद्ध हो रहा है। एआई आधारित सिस्टम रोगों की जल्दी पहचान कर सकते हैं और सटीक उपचार सुझा सकते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का निदान अब पहले से कहीं अधिक तेजी और सटीक हो गया है। रोबोटिक सर्जरी और वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट मरीजों की देखभाल को और बेहतर बना रहे हैं। इससे चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और जीवन प्रत्याशा बढ़ी है।

एआई ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी नई दिशा दी है। कंपनियां एआई का उपयोग डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा और उत्पादन प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कर रही है। ऑटोमेशन के कारण कार्यों की गति और सटीकता बढ़ी है, इससे लागत में कमी आई है और उत्पादकता में वृद्धि हुई है। एआई आधारित चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बना रहा है।

एआई क्रांति ने रोजगार के क्षेत्र में भी बदलाव लाए हैं। जहां एक ओर कुछ पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर नई नौकरियों के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग और

AI विशेषज्ञता जैसे नए क्षेत्र उभर रहे हैं, इसलिए आज के समय में कौशल विकास और नई तकनीकों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो गया है।

AI हमारे सामाजिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म AI के माध्यम से हमें वही सामग्री दिखाते हैं जो हमारी रुचियों के अनुसार होती है। स्मार्ट होम डिवाइस हमारे दैनिक कार्यों को आसान बना रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही डेटा गोपनीयता और सुरक्षा जैसे मुद्दे भी सामने आए हैं जिनका समाधान आवश्यक है।

एआई के विकास के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मशीनें मानव नियंत्रण से बाहर ना हो जाएं। इसके अलावा एआई के कारण बेरोजगारी, डेटा चोरी और नैतिकता से जुड़े प्रश्न भी उठ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी और संतुलन के साथ किया जाए।

एआई का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आने वाले समय में एआई और अधिक उन्नत होगा और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। स्मार्ट शहर, स्वचालित वाहन, उन्नत चिकित्सा और बेहतर शिक्षा प्रणाली एआई के माध्यम से संभव हो सकेगी। यह मानव जीवन को और अधिक सुविधाजनक और समृद्ध बनाएगा।

एआई क्रांति वास्तव में संभावनाओं का नया संसार है जो मानव जीवन को नई दिशा दे रहा है। यह तकनीक हमारे जीवन को सरल, तेज और अधिक प्रभावी बना रही है। हालांकि इसके साथ आने वाली चुनौतियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि एआई का उपयोग सही दिशा में और जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो यह मानवता के लिए वरदान साबित हो सकता है। इसलिए हमें एआई को अपनाने के साथ साथ उसके संतुलित और नैतिक उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें।

0: तो चलिए दोस्तों, हम आपको सुनवाते हैं आयुष दुबे की स्वरचित कविता।
1: सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसी कविता प्रस्तुत करने वाला हूं मैं, जो एक कैदी पत्र लिख रहा है अपनी माँ को। जी हाँ, ये कैदी हमारे ही अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बैठकर सेलुलर जेल से अपनी माँ को पत्र लिख रहा है, और वो पत्र में वो सारी बातों का व्याख्या करता है जो वो झेल रहा है सेलुलर जेल में बैठकर। पत्र की शुरुआत वो ऐसे करता है कि ऐसे शब्द मैं लाऊं कहाँ से, ऐसे शब्द मैं लाऊं कहाँ से कि हाल यहाँ का लिख दूं माँ, ऐसे शब्द ना है जहाँ में कि वीरों की वीरता उकेर दूं माँ। मैं हृदय निकाल कर भेज रहा हूँ, मैं हृदय निकाल कर भेज रहा हूँ, आंसू थाम पढ़ लेना तुम, और याद मेरी जब आएगी तो शब्दों की धड़कन सुन लेना तुम। माँ तुम्हारी मीठी पुकार की जगह कोड़े के वार ने ले ली माँ, तुम्हारी मीठी पुकार की जगह कोड़ों के वार ने ले ली माँ, तुम्हारी प्यारी लोरी की जगह दर्द के आह ने ले ली माँ। यहाँ कीड़े दौड़ते हैं खानों में, यहाँ कीड़े दौड़ते हैं खानों में, लाशें पड़ी है तहखानों में, समुद्र का पानी तन सहलाता है, जख्मों तक नमक पहुँचाता है। हम फांसी का फंदा बूनते हैं, हम फांसी का फंदा बूनते हैं, हम ही पहन कर झूलते हैं, हम पोछ लेते हैं आंसू भी, बटोर लेते हैं आशा भी। हम फांसी का फंदा बूनते हैं, हम ही पहन कर झूलते हैं, हम पोछ लेते हैं आंसू भी, बटोर लेते हैं आशा भी। हमें ताबूत से कमरों में दफन किया, तन के वस्त्र को कफन किया, और आज़ादी का दिवाकर छीन कर हमसे कटुक अंधेरा सौंप दिया। माँ मुझे यहाँ पर चांद छोड़कर और कुछ नहीं दिखता है, रोशनदानी जैसे छोर हो मांद का, रोशनदानी जैसे छोर हो मांद का, जहाँ पर दर्शन होता है साक्षात चांद का, जहाँ कोयल आज़ादी का गीत सुनाती, टूटी हुई हड्डियों में ऊर्जा भर जाती, चांद में झलकता है प्रतिबिंब ब्रह्मांड का, जी उठता है तन मेरा कर दर्शन चांद का। माँ मैंने चांद को ही सब कुछ मान लिया है, अब चांद को ही माँ माना मैंने, अब चांद को ही माँ माना मैंने, पिता को भी चांद में खोज लिया, महबूब को जोड़ा चांद से ही, और चांद को ही खुदा का दर्जा दिया। तुम्हारी ममता का प्यार चांद से, आज़ादी की दुआ गुहार चांद से, पिता के बुढ़ापे का दृश्य भी चांद, मेरे महबूब का इश्क

भी चांद, चांद ही है मरहम कोड़े के ज़ख्म का भी, चांद ही है ज़रिया गज़ल नज़्म का भी, वीरों पर उठे प्रश्न का जवाब होगा चांद, जब साक्षात आज़ादी का गवाह होगा चांद। माँ, मैं ये जो लिख रहा हूँ वो ना पत्र है ना खत है, ना पत्र है ना खत है, चलती सांसों का प्रमाण है, शब्दों में बांध लिया मैंने ब्रह्मांड है, छलकती हुई आंसुओं की भावना समेट दूं, तन के रक्त से मैं वीरता उकेर दूं, और हिंसा का मंत्र हमने लिया, हिंसा का मंत्र हमने लिया, अमृत देकर विष का घूंट पिया, और इन दानवों की मेहमान नवाजी में माँ मैंने अपना लहू निकाल कर सौंप दिया। माँ, तुम्हारे लिए कृष्ण का बाल रूप हूँ मैं, तुम्हारे लिए बगिये का एक फूल हूँ मैं, और यदि कोई खींच दे तार माँ के आंचल का, उसके लिए विध्वंसक स्वरूप हूँ मैं। परशुराम सा रौद्र है आँखों में, लक्ष्मण सा क्रोध है बाहों में, यदि रख दूँ अंगद सा पाँव सीने में, तो खाली कर दूँ भारत रातों में। जितनी धड़कन रोकी इसने, जितनी सांसें तोड़ी है, अब रक्त इनका बने गुलाल, और खेलनी मुझको

एक फूल हूं मैं, और यदि कोई खींच दे तार माँ के आंचल का, उसके लिए विध्वंसक स्वरूप हूं मैं। परशुराम सा रौद्र है आंखों में, लक्ष्मण सा क्रोध है बाहों में, यदि रख दूं अंगद सा पांव सीने में, तो खाली कर दूं भारत रातों में। जितनी धड़कन रोकी इसने, जितनी सांसें तोड़ी है, अब रक्त इनका बने गुलाल, और खेलनी मुझको होली है। आजादी का शंखनाद गूंजेगा समस्त देश में, जब होगी इनकी लंका दहन, जो आए रावण के भेष में। माँ स्वतंत्र हवाओं में गोरों ने घोला जहर, क्रूरता ने इनके मचाया कहर, अब जंजीर गुलामी की तोड़ूंगा मैं, और काले पानी में लहराऊंगा तिरंगा प्रखर। माँ हमारी वीरता की गाथा से पावन समुद्र हो जाएगा, हमारी वीरता की गाथा से पावन समुद्र हो जाएगा, जो हवाओं में चीखे गूंज रही वह वीर मंत्र बन जाएगा। माँ हमारी वीरता की गाथा से पावन समुद्र हो जाएगा, जो हवाओं में चीखे गूंज रही वह वीर मंत्र बन जाएगा, जहाँ पर रक्त की छींटे सजी हैं, जहाँ पर हजारों सांसें दबी है, जिस पीड़ा के आगे मौत है झूठी, जहाँ पर सांसों की डोर है टूटी, इतिहास के पन्नों में सेल्युलर अमर हो जाएगा, और एक दिन ये वीरों का मंदिर कहलाएगा। वो अंत में लिखता है कि माँ भले ही यहाँ पर कष्ट है, मगर यहाँ छल छल बहती समुद्र की लहरें, यहाँ हरियाली करती स्वागत सुनहरी, यहाँ वीरता की खुशबू है बहती हवा में। हाँ माँ ऐसी भूमि नहीं है पूरे जहाँ में, ऐसी भूमि नहीं है पूरे जहाँ में। हम कविता के माध्यम से इतिहास के हर पन्नों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो आज ऐसे ही मैं भारत के एक वीर की गाथा आप सभी के समक्ष लाने वाला हूँ, जिन्होंने नौसेना की स्थापना की थी, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो इनके जीवन पर आधारित एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। समृद्ध था भारत, समृद्ध था भारत, प्रसिद्ध था भारत, अखंडता का सर्वोच्च प्रमाण था भारत, वीर प्रसूता भूमि भी, संपूर्ण धरा का श्रृंगार था भारत। जब अखंड भारत के सीने में चली तलवार, तब बदली भारतीय नक्शे की आकार, जब स्वर्णिम भारत की चमक लगी गड़ने आंख में, तब आ गए डकैत हो घोड़े पर सवार, मुगल बेड़ियां उत्तर को कसने लगी, धरोहर धरा की धधकने लगी, जब पड़ी अंग्रेजी और पुर्तगाली छाया, प्रत्येक लहर समुद्री संकट बनी, उस घंघोर संकट की घटा तले शिवनेरी में दीप जगमगाने लगे, और ऐसी मीठी किलकारी गूंजी कि पत्थर ईंट भी झूमने गाने लगे। पिता शाहजी के चेहरे पर मानो चंद्र सी रौनक छाई हो, माता जीजाबाई की आंखों में कोई वीर गाथा समाई हो। माँ ने कहा, ये शिव के डमरू का कण इंसाफ का तांडव मचाएगा, मराठा वीर पुत्र मेरा शिवाजी कहलाएगा, शिवाजी कहलाएगा। आज कई सालों बाद आज सजा सिंहासन सिंह सेवा का, आज सजा सिंहासन सिंह शिवा का, सरताज शीश पर साजे हैं, और गर्जत गर्जत गूंज रहे जय शिवा के नारे हैं। हृदय निकाल कर सीने से प्रजा के हाथों सौंप दिया, हथेली बिजली सी तलवार पर धर आज शिवा ने शपथ लिया, शपथ मुझे हर रक्त की, शपथ बुरे वक्त की, मुझे शपथ है माटी की, जंग मैदानी घाटी की, शपथ तलवार के धार की, शपथ तन के श्रृंगार की, मोती झालर से कलित ललित, मुझे शपथ इस ताज की, अब हर सांस प्रजा के खातिर ही, हर आस प्रजा के खातिर ही, प्रजा के खातिर दिन रात मेरे, अब प्राण प्रजा के खातिर ही, कफन बांध कर मस्तक में मैं रण में रक्त से रंगा हुआ, प्रत्येक सांस पर ज्वाला मेरे, वीरता में मैं रमा हुआ, यदि पराजय लेकर लौटू रण से, यदि पराजय लेकर लौटू रण से, तो मराठा शब्द काट देना तुम, यदि शत्रु से हाथ मिला दूं तो नाम कलंक बताना तुम, जब तक मराठा नाम जुड़ा है प्रजा हित पथ पर चलूंगा मैं, जब तक स्वतंत्र स्वदेश की माटी नहीं तलवार ना म्यान में धरूंगा मैं, सत्य शिवाजी नाम हो सत्य मेरा हर काम हो, भले ही रण में हो हर भोर हमारी, पर मराठा ध्वज तले हर शाम हो, मंत्र मराठा माटी की, मंत्र मराठा माटी की, कोई दक्षिण में ना घुस पाएगा, जो भारत लेने आया था वह धूल नहीं ले पाएगा, मराठा श्रृंगार हूं मैं, ललकार हूं मैं, हुंकार हूं मैं, यलगार हूं मैं, जो फाड़ दे छप्पर दुश्मन का वह फरसे की धार हूं मैं, जय शिवाजी जय शिवाजी, मिसाइलों में भी गरज रही, और वीर शिवा की अदम्य साहस आज नौसेना में झलक रही।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आयुष दुबे की स्वरचित कविता। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे हमारे साथ
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सबीना बानो को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने फिल्म बदतमीज़।

0: दिन हो या रात
1: टू हेल विद इट
2: है दुनिया के बाद
1: टू हेल विद इट
2: हर दिन हो या रात
1: टू हेल विद इट
2: गुस्सा लगा आने दे नशा गुस्सा लगा आने दे नशा
0: ऐश किए जा और मौज किए जा और प्यार किए जा

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। रोजगार समाचार। अंडमान लोक निर्माण विभाग APWD में कार्यपालक अभियंता सिविल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 7 पदों को प्रतिनियुक्ति ISTC के आधार पर प्रारंभिक 2 वर्ष की अवधि के लिए भरने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वेतन लेवल 11 ग्रुप ए राजपत्रित गैर मंत्रालय नियुक्ति अनुबंध के आधार पर होगी। अभियुक्ताओं को इनमें से कोई एक शर्त को पूरी करनी होगी। मूल विभाग कैडर में समान पद पर नियमित रूप से कार्यरत अधिकारी या पे मैट्रिक्स के लेवल 9 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 5 वर्ष की सेवा या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित नियुक्ति के बाद कम से कम 7 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की Part A Part B परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। अभ्यर्थियों को सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में बायोडाटा 2 प्रतियों में विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट पिछले 5 वर्ष की APAR ACR प्रतियां भी लगानी होंगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन उप सचिव PWD अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय कक्ष संख्या 139 श्री विजयपुरम में 18 जुलाई तक जमा कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अभी आप रोजगार समाचार सुन रहे थे। श्रोताओं, अब सुनिए गौरव गान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है, मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमेरिका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय
1: इंडो पैसिफिक में हमारे साझा

0: प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
0: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

0: समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।

0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोत्स्युक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का इच्छुक। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defence and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top 3 economies driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program.

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। और यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं, और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's the slightly upgraded version of your backroom, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता

0: केंद्र हैं वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या हैं और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
1: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे। लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, ये सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है, आज अगर आप देखें भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है, बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप जो है भारत के अंदर है, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं इसमें जो है आगे चल के मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के, पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कंटीन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे इंडस्ट्री, एकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
0: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can...

0: do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI, and what is it that India can contribute in this space? And which is why the thought was that India really needs to become the application and AI-based solution capital of the world, and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCCs in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में, वह किस रूप में पूरी क्षमता के साथ हम दुनिया के सामने रख सकेंगे।
2: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को, यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है, बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है, और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन। क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे, बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी, और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें कि हम विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें। जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है। आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है। आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेस ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया। भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए, वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल, 20 साल, 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं, वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं। ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी आई है जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है, वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फर्दर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्री, एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को। तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है, जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है। तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है, और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं, और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें कि 1.4 बिलियन

0: 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ मोबाइल से वो लोग कनेक्टेड हैं। तो डिजिटल कनेक्टिविटी हमारे गांव तक है, लास्ट माइल तक है। ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है। जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं, इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं। इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर
1: हो
0: रहा
1: रहा है।
0: है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDTalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

श्रोताओं, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9474234000 पर, अपना नाम, फिल्म का नाम, अपना पता और गीत के बोल।

महाबलेश्वर नगर नरबेल महाराष्ट्र से पीएस नहवकर की, निर्मला नहवकर की और विशाल नहवकर की। ये लोग सुनना चाहते हैं अमर फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है तेलंगाना भोंगीर से। मोहम्मद बुरहुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, समीरा आजमीन गुड़िया की।

श्रोताओं, फना फिल्म का ये गीत सुनना चाहते हैं झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहाद, मिफ्रा नवाज़ और बेबी चाहत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: तो श्रोताओं, अब संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की फरमाइश पर चला देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेशे आते हैं यहीं पर समाप्त होता है।

मौसम मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार के कुछ एक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। इस समय रात्रि के 10:30 और 50 सेकेंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28:30 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कार्यों से होती है। प्रत्येक कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, यदि ईमानदारी, निष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ किया जाए तो वो सफलता और सम्मान का आधार बनता है। समय पर और पूरे मन से किया गया कार्य न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।